0: क्लास तुमको वावी
1: ती अमने रसोमनी इसा तापकलू ते मंदीकेल ते तापका ते मंदीकेल तापका ते मंदीकेल ते निवाले फितुल अपन जकानुरन समाई ता फाउला ने मिचा वचले चीर का पोका रिंग सारे नमले उल इसा ना लाव सो ओजो ओम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभ ये फमिसा चाहुता का मिचो याद का पोका वो ते सामे फाउला ने ताले फितुल अपन जकाना विशोवे अमान ले तेले स्टार्स पची माना मिले वे चिरामान तो कुन्या पीन पिचेसन तार ने अम्नुलना अम्नी अमान ले उलना रे तेले स्टार्स पची चिर का पोका वे फाउलन तो कुन मंदिर क्या मिचो माला कास मालोना से सावन मिचा हम सो वचन ने कि अतोफ तो वना ये चिरु अम्नी ता जावना तुम चुस्वे तेरा तेरे मंगो माना सुआ फोक सेवन मिलना तुल चिर तु patukum tungasana le malakas malona sesawa misa jadi sampai ni tan seru yang mana nulan cirama soi
0: shoto tumpukla shoto tumpuk vav

0: गिलास तुम कुफा भी
1: रंडेश का हरे ना हम तन जरें दिया एफ मिया विची मिया अंबिफ्ट मिया रें ये रंजोत तुझो फंदत

0: कुलास तुम कुफा भी
1: मनुकना तुकुन वे अथो मार पेम सारा सारा जान ले रान ते मिला तो बेचा का लेती हो ते बाम मिसी सकी में तो कठान जान ले रान बची चाले ले पाओ ना ते वे अंधुआ फना रूफानी संबुला ना ली अच्छा बनी यो चिरे अंकुआ रावर तो मिस पोतोरे रितु कुंबा पोतोरे जाम मजा का चिर मार मार मसापचा पना ते वोट शायद अन्य चान मिस ते अब चालो तो सेवा सेनो फाउला ना ये तक कुंबा रूस मंचिक
2: रनाम को मनुको ना सो निफाउला ना वे नेति मिफान देखा मिसे दे वे नेति मिफाम्रोना ना फुट सफ़ता सा वे माकास कनी रान जो चले सकाबारास मिचिरो जो चान आय हाँ रा वो तो ज़रा माकास कनचिर जो दे सेटिंग है ना सिर्फ से मिला अच्छा रहा ना निपोटो नी उल्लू ना कुछ जान मातेत क्या चम आयें क्या ने सावचा इलान ने पंजी बस जान नी इन्हों में येर नारा चा ऐसे कम चिक ते यो अम सेज़न मिला वे अच्छा रहा ना यान कुछ जान
3: Si tak itu zaman yang ada ni bapu zaman hari ni sekarang itu ecan rumit. Si tu kena durun durwalah zaman ni. Mila seluruh nanti orang cira mamba iba cha deba cha naik deh zaman bapu zaman saya. Zir tulis tas ti deba yang zane. Deba fitin zir cemiana. Zan fana cara ni kal tau apa sah zane. Ba cara cara ni ampan zir.
4: Multi ni nana api tipe api tipe nama kau fola nara esna. Fana canan tu tulian, nana sofu London, baci baci mana nani tuiran, si kerutan nana nanti, lasar rija ram, di mana reksani finansial naga mencira mah, finansial naga bebek kupu, ye, tena rian macam ni yang penting, piam le reseka security watan muteri, no, di masa ni piam ni, nawe ye reseka tuos, se betul cek cek nawe se kunulan nani. Am sowe citung cuma patungan ram, metode seka fasimban.
0: Shota tumpuklah, shota tumpuk vav.